आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डीटीएच चैनल रागम, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग बैरागी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं कोयल दास गुप्ता. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं इमोन सरकार. तो आइए सुनते हैं राग बैरागी में ख्याल गायन, कलाकार कोयल दास गुप्ता.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. Listen first to a khayal in the rag Bairagi. Our artist is Koyal Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla is Imon Sarkar. Listen now to a khayal in the rag Bairagi. Our artist Koyal Das Gupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी कोयल दास गुप्ता। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे इमोन सरकार। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बिलास खानी तोड़ी में धमार। आज ही कलाकार हैं शिवली चक्रवर्ती। आज आपके साथ पखावज प्रसंगत कर रहे हैं अपूर्व लाल मन्ना। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बिलास खानी तोड़ी में धमार, कलाकार शिवली चक्रवर्ती।
1: You were listening to a khayal in the raag Bairagi. Our artist was Koyal Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla was Imon Sarkar. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present Adhamar. Listen to Adhamar in the raag Bilash Khani Tori. Our artist is Shivli Chakraborty. Accompanying her on the pakhavaj is Apurbalal Manna. Listen now to Dhamar in the raag

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग विलास खानी तोड़ी में धमार सुन रहे थे। कलाकार थी शिवली चक्रवर्ती। आज आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे अपूर्व लाल मन्ना। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a dhamar in the rag Bilash Khani Tori. Our artist was Shivli Chakraborty. Accompanying her on the pakhavaj was Apurbalal Manna. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजा काड़े का गायन. प्रस्तुत है राग पुरिया. मध्यलय ख्याल झपताल में निबद्ध है. बोल है अब तारो बिन कौन मोरी राखे लाज. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल है श्याम कुंवर मोरे घर आए. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट वोकल रिसाइटल बाय राजा काड़े. He presents Raag Puriya. Madhyalaya Khyal set to Jhaptal. Bol Ab Taro Bina Kaun Mori Rakhe Laaj. Drut Khyal set to Teen Taal. Bol Shyam Kuvar More Ghar Aaye.

यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आप सुन रहे थे राजा काले का गाया राग पुरिया। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे शंतनु किंजवड़ेकर, वॉयलिन पर संगति कर रहे थे कैलाश पात्रा तथा हारमोनियम पर संगति कर रहे थे प्रकाश वगर। अपना गायन जारी रखते हुए राजा काले अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग छाया नट। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है करत जो मोसे नहा की झूठी बतिया। द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है प्यारी लाडली करत बतिया। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दैट वॉज राग पुरिया बाय राजा काले। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय शंतनु किंजवड़ेकर, ऑन वॉयलिन बाय कैलाश पात्रा एंड ऑन हारमोनियम बाय प्रकाश वगर। कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल राजा काले नाउ प्रेजेंट राग चैनट। विलंबित ख्याल सेट टू एक ताल, बोल करत हो मोसे नेहा की झूठी बतिया। द्रुत ख्याल सेट टू एक ताल, बोल

ये था राग छायानट। आप सुन रहे थे राजा काळे का शास्त्रीय गायन। उन्हें तबले संगति कर रहे थे नीलेश जाधव तथा हारमोनियम पर संगति कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग छायानट। यू वेर लिसनिंग टू वोकल रिसाइटल बाय राजा काळे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय नीलेश जाधव एंड ऑन हारमोनियम बाय श्रीनिवास आचार्य। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है SL कंडारा का वायलिन पर बजाया राग अलहैया बिलावल. विलंबित गत 3 ताल में निबद्ध और द्रुत गत 1 ताल में. तबले पर आपकी संगति की है रोहित कसवालिया ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a violin recite by Sri SL Kandara. First listen to rag Alaiya Bilawal. The alap is followed by Vilambit Gat, which is set to Teen Tal, and Drut Gat is set to Ek Tal. He is accompanied by Sri Rohit Kaswalia on tabla.

0: अभी आप एसएल कंडारा का वायलिन पर बजाया राग अलैया बिलावल सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए राग कोमल ऋषभ असावरी में आलाप। विलंबित गत तीन ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है रोहित कसवाला ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग अलैया बिलावल बाय श्री एसएल कंडारा। नाउ लिसन टू राग कोमल ऋषभ असावरी। द आलाप इज फॉलोड बाय विलंबित गत विच इज सेट टू तीन ताल एंड द्रुत गत इज ऑल्सो सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड बाय श्री रोहित कसवालिया ऑन तबला।

0: अभी आप सिल कंडारा का वायलिन पर बजाया राग कोमल ऋषभ असावरी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी रोहित कसवालिया ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन राग कोमल ऋषभ असावरी बाय श्री एस एल कंडारा। ही वाज अकंपनीड बाय श्री रोहित कसवालिया ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बांसुरी वादन. कलाकार हैं पंडित रूपक कुलकर्णी. सर्वप्रथम आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मारवा. विलंबित और द्रुतगत एक ताल में निबद्ध है.
2: लिसन टू हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित रूपक कुलकर्णी प्रेजेंटिंग राग मारवा विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू एक ताल.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। पंडित रूपक कुलकर्णी से बांसुरी पर आप सुन रहे थे राग मारवा। तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राज देव और बांसुरी पर स्वर साथ दे रहे थे अवधूत फड़के। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित रूपक कुलकर्णी प्रस्तुत कर रहे हैं राग यमन, जिसमें आप सुनेंगे आलाप जोड़ झाला, मध्यलयगत मत ताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग टू राग मारवा ऑन फ्लूट बाय पंडित रूपक कुलकर्णी। Accompanying him on tabla was Mukund Raj Dev and Swarasath on Bansuri by Avdhoot Phadke. Continuing the concert, now listen to Raag Yaman, in which you will listen to Alap Jod Jhala, Madhyalaygat said to Mattal and Drutgat said to Teen Tal.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित रूपक कुलकर्णी का बांसुरी वादन। तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राज देव और बांसुरी पर स्वर साथ दे रहे थे अवधूत फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है। हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट रिसाइटल by Pandit Rupak Kulkarni. Accompanying him on tabla was Mukund Raj Dev and Swarasath on Bansuri by Avdhut Fadke. This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्र।

0: शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको सुनाएंगे शुद्ध कल्याण पर ख्याल गायन। कलाकार हैं अमृता सारखेल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कमलाक्ष मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग शुद्ध कल्याण पर ख्याल गायन। कलाकार हैं अमृता सारखेल।
1: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani Vocal Recital. Listen first to Khayal in the Rag Shuddh Kalyan. Our artist this evening is Amrita Sarkhel. Accompanying her on the tabla is Tarun Roy and on the harmonium is Komalaksh Mukhopadhyay. Listen now to Khayal in the Rag Shuddh Kalyan. Our artist Amrita Sarkhel.

0: अभी आप राग शुद्ध कल्याण पर ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थी अमृता सारखेल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे कमलाक्षा मुखोपाध्याय। कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए हम आपको पहले सुनवाएंगे माज खम्माज ठुमरी और उसके बाद पीलू दादरा। कलाकार हैं अमृता सारखेल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कमलाक्षा मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है माज खम्माज ठुमरी और उसके बाद पीलू दादरा। कलाकार हैं अमृता सारखेल।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन द राग शुद्ध कल्याण। आवर आर्टिस्ट वॉज अमृता सारखेल।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप माज खम्माज ठुमरी तदुपरांत पीलू दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी अमृता सारखेल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे कमलाक्षम मुखोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to Pilu Dadra. Our artist was Amrita Sarkhel. Accompanying her on the tabla was Tarun Roy, and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है गुलशन भारती का उप शास्त्रीय गायन. आइए पहले सुनते हैं मिश्र काफी में ठुमरी जिसके बोल हैं अचरा छोड़ो कन्हाई. तबले पर संगत की है अरुण कुमार भट्ट ने और हारमोनियम पर इलियास खान ने.
2: दिस इज रागम. टुडे इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर गोइंग टू प्रेजेंट लाइट क्लासिकल वोकल बाई गुलशन भारती. फर्स्ट ही इज गोइंग टू प्रेजेंट ठुमरी इन मिश्र काफी. कॉम्पोजिशन इज अचरा छोड़ो कन्हाई. अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला अरुण कुमार भट्ट एंड ऑन हारमोनियम इलियास खान.

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे मिश्र काफी में ठुमरी, और आइए अब सुनते हैं माज खमाज में दादरा, जिसके बोल हैं पिया लागी लगनिया। कलाकार हैं गुलशन भारती।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग ठुमरी इन मिश्र काफी, नाउ यू लिसन दादरा इन माज खमाज। कॉम्पोजिशन इज पिया लागी लगनिया बाई गुलशन भारती।

0: ये था माझ खमाज में दादरा। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं मिश्र भैरवी में ठुमरी, जिसके बोल हैं अलसाने नैना जागे।
1: यू आर लिसनिंग दादरा इन माझ खमाज। बाई कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम नाउ वी आर प्रेजेंटिंग ठुमरी इन मिश्र भैरवी। कॉम्पोजिशन इज अलसाने नैना जागे।

0: मिश्र भैरवी में गाई ठुमरी के बाद आइए अब सुनते हैं मिश्र कालिंगड़ा में दादरा, जिसके बोल हैं बालम नैया डगा मग डोले।
1: आफ्टर ठुमरी इन मिश्र भैरवी, नाउ गुलशन भारती इज प्रेजेंटिंग दादरा इन राग कलिंगड़ा। कॉम्पोजिशन इज बालम नैया डगा मग डोले।

0: अभी आप सुन रहे थे गुलशन भारती का गाया मिश्र कालिंगड़ा में दादरा। तबले पर संगत की थी अरुण कुमार भट्ट ने और हारमोनियम पर इलियास खान ने। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।
1: यू आर लिसनिंग तुमरी एंड दादरा बाय गुलशन भारती। Accompanying him on tabla, Arun Kumar Bhatt, and on harmonium, Ilyas Khan. This is Ragam 24/7 DTH, Anytime Indian Music. This program was contributed by All India Radio, Lucknow.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ध्रुपद गायन. कलाकार हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर. राग है भैरव. इसमें आप सुनेंगे आलाप, जोड़ और एक रचना जो चौताल में निबद्ध है. बंदिश के बोल हैं विष्णु.

रण जल ब्रह्म कमंडल। संगत कलाकार हैं पखावज पर पन्नालाल उपाध्याय। ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1989 में की गई थी। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर। द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग भैरव। The accompaniment has been provided by Panna Lal Upadhyay on the Pakhavaj. This was recorded in the year 1979.

अब आप सुनेंगे राग रामकली में धमार। बोल हैं एरी आली भई भोर। कलाकार हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर। नाउ लिसन टू अ धमार रेंडिशन इन द राग रामकली बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर।

आप सुन रहे हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गायन। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गाया राग खमाज में आलाप, जोड़ और एक रचना जो चौताल में निबद्ध है। बंदिश के बोल हैं माई री बरजो न मानत। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग खमाज़।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गायन। संगत कलाकार थे पखावज पर पन्ना लाल उपाध्याय। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर। द कंप्लीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पन्ना लाल उपाध्याय ऑन द पखावज। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी. विलंबित ख्याल एक ताल में निभाए. बोल हैं काज मोरे बन आवे और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोन पर सज्जाद अहमद ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रेंडिशन बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां. फर्स्ट लिसन टू राग बैरागी. द विलंबित गत इज सेट टू एक ताल. द वर्ड्स आर काज मोरे बनावे एंड द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल. He is accompanied by Nawab Ali Khan tabla and Sajjad Ahmed on harmonium.

Ma ba sa re sa ni ma ni sa re ma ba re sa re ma pa ni ma pa ni ni pa.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग मेघ। मध्य लय झपताल में निबद्ध है, बोल हैं गर्जे घटा घन। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम सज्जाद अहमद ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बैरागी बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। नाउ लिसन टू राग मेघ। द मध्य लय गत इज सेट टू झपताल। The words are Gharje Ghata Ghan.

0: आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मेघ बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। ही वाज अकॉम्पनीड बाय नवाब अली खान ऑन तबला एंड सज्जाद अहमद ऑन हारमोनियम। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शंकर घाणेकर की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है गजानन वाटवे और सहकारियों ने, स्वरबद्ध किया है राम पेठे ने।

अभी आपने शंकर घाणे ने लिखी गजानन वाटवे और सहकारियों के स्वर में यह भक्ति रचना सुनी, जिसे संगीतबद्ध किया था राम पेठे ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं महादेव बुआ शाहबाजकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी महादेव बुआ शाह भास्कर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना कालिंदी साठे के स्वर में।

कालिंदी साठे के स्वर में संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं ऋषिकेश बोड़स और मंगला जोशी के स्वर में।

ऋषिकेश बोड़स और मंगला जोशी ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पद्माकर थत्ते के स्वर में संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी पद्माकर थत्ते के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना सरोज गोखले के स्वर में।

सरोज गोखले ने गाई संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना, अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं वीणा भक्ति मंडल ने गाई ये भक्ति रचना।